0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों?
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या?
0: क्या?

Es un teringue jobón. Teringue jobón. गाड़ी में यार में बने एक आर गाड़ी सावीस मिनट हिंगा फकोरी अमेदा शो मिहा हिसाब और निम्मा लावा को तुम्हें जोने उम्मीद में को रहने शो के तेरे गेनिस्ते होने लावा तक कमो दिया कमो वारा उफावेर वारा बाजर वागुत कोड़ के दें अस्सलामुअलैकुम।

0: মুন্না কবা কি হিনাকে দেড়া হিয়া
1: আলহামদুলিল্লাহ মুন্না আরাঙ্গা কালো মেং দেড়া হিয়া
0: আফনাস দেড়া হিয়া মুন্না মুন্না কম বড়ামেকে দাক্কা ফুং আতা
2: মুন্না তিহাই বরক হ ভেন্না হিং কমেন নে আফন তিকং কোলান্না
1: তিকু দুং হাউদা হাই রাঙ্গালায়ে তিহেন মুন্না আই কহি আহো হাল বলা ফে মুন্না রকাং কাং কো দেন না হে দি মুন্না ওয়ারহা উপাবে
3: হিমবিহি রক্কা তেরুম
4: হিমবিহি ভ্যাকসিন দেডোস হামকুরুম
3: সাবুন লাগিং আদ্দুম
4: কেসা কিবি আলানামা আঙ্গয়া নেফে নিওয়াকুরুম
3: হিমবিহি গে এভস আলামাতে হুরনামা মাস্ক এলুম
4: আদি হিমবিহি গে আলামাতে হুরনামা একহেরিবুম
3: হিমবিহি গে আলামাতে ফেনিজনামা লাসনু কুরবা সিহি ফরওয়া হোদবা
5: ಮೆಗೆ ಫಹುರುವರಿ ತಾರಿಹ ಮಿನಿಮಂ ಕಮುಗೆ ಉಫಾವರಿ ಕುಲವರು ತಿಯ ಎಹುಂ ತೆರಿ ನಂಗಿಂಗೆನಿ ಇಹಾವರ ಕಬ್ಬ
6: ಪೆರೇಡ್ ತೋಗ ಕುಲತಕ ಕುಳಿವರ್ಗ ಅಡುತಕ ಅದಿ ಅಳುಗಂಡ ಮೆಗೆ ತಾರಿ ಹೆ ಬತಲುಗ ಹಂದಾಂತ ಆಕೊಲ್ಲಮ
7: ಮಿಹರುಗೆ ಮಿನಿಮಂ ತೋಹುಗ ಉಫಲುಗ ದಿವಿಹಿ ಫೆಮ್ಮುಂ ಗೆನಿಸ್ ದೆನಿ
8: ಮಿನಿಮಂ ಫೋರ್
9: This wall, first or second. ತಿಬಾಗೆ ಮೌದು ಮಾತುಗೆ ಮುಸ್ಸೆಂದ ಕಂಹುರಿ ಕಿಹಾವರ ಕತೋ ಬಲಾಲುಮ ಮಿನಿವಂದುವಹುಗೆ ರೇಗಂಡು ಅಗ್ಗಡಿ ತಿರೀಹುಗ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಿನಿವಂದುವಹ ಹಾಸಕೋ ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂ ಮುಂಗೆನಿಸ್ತೇನಿ
10: ಮಿನಿವಂದುವಹ ಗುಳೆ ತಫಾತ್ ಮೌಲೂಮಾತ್ತಕ ಎಹುಂತೆರಿಂಗೆ ಬ್ಯಾವೆರು ಮಾಯಕು ಸ್ಟುಡಿಯೋಯಿಂಗ್ ವಗುತು

0: ਸ਼ਕਤੀ ਵਹੀ ਐਫਐਮ 9.1 MHz।
1: ਬਲਾਲਨ ਸੜੀ ਮਿਸਿਸਤਾਗੇ ਮੀ ਹਫਤਾਗੇ ਸ਼ੋਗਾ ਬਲਾਲਨ ਸੜੀ ਫਿਲਮਕਾ ਫੁਰਤਮਾਲਗੁਣ ਮੀ ਹਿਮਨਾਲ ਦੇਨੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੇਗੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਹਾਸ ਬਾਬਿਸਵਨਾਹਰੁ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਉਂਦਾ ਕੰਫੇਸ਼ੀ ਡਾਰਲਿੰਗ ਸਕੀ ਇੰਡੀਆਗੇ ਹਿੰਦੀ ਬਲੈਕ ਕੋਮੇਡੀ ਫਿਲਮੇ ਮੀ ਜਸਮੀਤ ਕੇ ਰੀਨਗੇ ਫੁਰਤਮ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੋਫਵਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਤਲਾ ਆਲਿਯਾ ਭੱਟ್ਗੇ ਅਮਿਲ ਪ੍ਰೋਡਕ਷ನ್ ਹೌਸ್ ਕਮਵ್ವಾ ಎಟರ್ನಲ್ ಸನ್ಶೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಶಾಹರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ರೆಡ್ ಚಿಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕುಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗಂಡ್ ರೋಲ್ ತಂಗ್ ಅದಾ ಕೊಫವಣಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಶಿಫಾಲಿ ಶಾಹ್ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅದಿ ರೋಷನ್ ಮಿಥಿವ್
2: ಮೇರಾ ನಾಮ ಹೈ ಹಮ್ಜಾ ಶೇಖ್ ಮೈಂ ಬದ್ರುನಿಸಾ ಶೇಖ್ ಕಾ ಶೋಹರ್ ಹೂಂ ಮೈಂ ಅಪ್ನಿ ಬೀವಿ ಸೇ ಬೇಹದ್ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಲೇಕಿನ್ ಮೈಂ ಉಸೇ ಛೋಡ್ ಕೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೂಂ
3: ಹೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಮ್ಯಾಡ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು
4: बाप रे बाप।
5: रमन काका, हमजा नहीं आए?
4: नहीं।
5: साहब, मिसिंग कंप्लेंट फाइल करनी है।
6: कौन मिसिंग है?
5: मेरे हस्बैंड हमजा।
6: कभी से गायब है वो?
5: परसों।
6: कल से या परसों से?
5: कल और परसों के बीच में से साहब।
7: ना दो दिन पहले काम पे गया।
2: कभी कभार ठीक है सर, लेकिन ये रोज तो मत करवाओ। टीसी है।
7: लेकिन वापस ही नहीं आया।
8: काम पर गया, घर पे वापस नहीं आया।
6: क्या बोलते दादू?
9: केस क्लोज है सर, कंफर्म।
5: हमसा, मैं समझाती।
2: सुनी कर।
5: मेरी बात तो करो।
2: क्या कर रही हो ये सब?
10: ए बच्ची।
2: हाथ खोल सालीन तो जान से जाएगी।
10: किधर जा रहे ली? अरे आगे कुआं पीछे खाई। किस्मत ने वाट लगाई।
5: दारू छुड़वाने की दवा बोली थी ना,
7: चूहे मारने की दवा खाने में डाल दे, जिंदगी पर दारू नहीं पिएगा।
10: करूँ हलाल बिछा के जाल, बचेगा कैसे मेरे लाल।
5: मेरे को हमजा को मारने का नहीं है, इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ की। फील्डिंग बहुत हो गई अम्मी, अब बैटिंग चालू।
2: छुपा पाएंगे हमजा को? पकड़े जाएंगे
5: सर।
11: हमजा के डैडी ऑफ हो गए।
5: अल्लाह मियां उन्हें जन्नत अता फरमाए।

0: जुल्फी, अगर तूने हमजा को किडनैप किया है ना, तो सांप को सच बता दे।
1: बाप रे खालम, मैंने क्या? आप दोनों ने
0: जुल्फी,
2: मिसन गवाहक बिनाय फवानी मुंबई के मेदुफंती के मुस्लिम आइला के मच्चा आलिया अदाकुरा कैरेक्टर बदरुन निसाय की एना के फिरिमी हा हमसा देके नुहनु लोबिवांग हेने नविस हमसाय की बदरुन निसाय बोडति अनियात के कुरा नफसानी गोतुन्ना जिस्मानी गोतुन एना अलवति कोफवा मीहे बदरुन निसा बद सुम्मीद कुरनी हमसा रंगळु माने कमा एकमकु हिद्दति हादिसाय के सबुं बदरुन निसागे मि उम्मीद फुंडु फुंडुवे एना के केत्तिरिकं कुळुनला हिसाब दे मिहिसाबं बदरुन निसा एना के मम्मा शम्सुआ गुळिगें हमसायं एना कुरि अनिया के बदल हिफुमनिम्मा मे बदल हिफुं गे तेरे हिंगा मजा अदि नूतनवस हादिसा तकी फिल्म गे एमए शौगवेरि पे
3: क्या कर रही हो ये सब हाँ? खोलो मेरे को।
4: फ्रॉक्स कैसे लगी डार्लिंग्स?
3: ये नंगा पद बंद करो और हाथ खोलो मेरे।
4: और पोनी?
3: पागल हो गई हो क्या? शोहर हूँ मैं तुम्हारा।
4: आपको पोनी पसंद नहीं है ना, इसलिए बांधा है। रमन काका मिले से कह रहे थे कि बिल्डर ने कहा अगर अखे सोसाइटी मेंबर नहीं माने तो बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट नहीं होएगा। मैंने कहा कैसे नहीं होएगा, हमजा तो मान गए। साइन करो।
3: हाथ खोल ली तो जान से जाएगी।
4: साइन करो।
3: सुन नहीं रही तो हाथ खोल।
2: डायरेक्टर जसमीत वणी गेवेशियानिया फॉर द सीरियस मौदू ए ब्लैक कॉमेडी ए गोतुगा वर फुरी हमिया गिनस्तीफा फिल्म का अनियावरी कंदा कुआ देर उस बेलुन तेरिंग हिनियन न फदा जो कुतका हादिसा तं हिमना फनी माउदो के सीरियस कं नुगेले फदा कुतका फिल्म के म्यूजिक तैयार को फवनी विशाल भरद्वाज लवतो के तेरे लाइलाज की गिनबे के मकबूल कं हो दी असर कदलावे गुलजार गलिं विरिकमुं फिल्म के असर इतुरा वर्गद कोते

0: इरोसे मैं रहने चाहेंगे
1: लपदता ऐहर जहू गेनस्ते ना
2: स्टेडियम हुन्नने कैर हिसाब का कमो जहुरा आया को फैमो गामाय हाहिंगे गते जहुरा गे मिजाज दस कुरम रेणु वाते इतफा तो सवाल तमाय हा कुरिए बाय सवाल तक मेणुवी जहुरा जवाब एनु दिने एक मामा बड फरवा ले माय हानु बेहेटिए जहुरा या एकवेरी कंबा देहु मुंग एंगिदाने कम उम्मीद कोल्लमुने वाहक आगे तेरे जहुरा को ले सवाल माय हा सिहुने
3: असल लकी माय के बॉयफ्रेंड ता
2: जहुरा के सवाल देने जवाब नेगिफा माईहा यंहुरेवनी हुट्टुं अराफे कुल्लियका जहुरा के फरातुं ए सवाल कुरिमतिवी कीवेगें हेये जहुरा या कामे फाहग कुरेवनी हेये होशियार कमायका वंहना कुरमंगा हितुगे